0: ल है अब काम डुब्यो जानुपर्छ।
1: उसो भए बिदामाङ पढ्ला है। ल है लिम्बुनी कान्छी सेवारो
2: सेवारो।
1: ल है मेरो लिम्बुनी कान्छी सेवारो।
3: लिम्बुनी को लिम्बुनी कसले भनेर लिम्बु भनेर म गर
0: बिचारा इट्स ओके म्यान।

0: को इंटरनेट गेट कनेक्टेड स्टे कनेक्टेड।
1: नयाँ जडानको लागि सम्पर्क 9800813424 र 9850614175।
2: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।
3: शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।
4: यति बेला दिउँसोको ठिक 2 बज्यो।

0: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6 MHz।
1: अमीरों की शादी है तो फंक्शनों की कमी नहीं होगी। वेलकम टू देसी सनडाउनर विथ रंग और पार।

0: किशोर गंदे सॉन्ग यार।
1: डांसिंग पागल है
0: क्यों?
1: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग, ट्रोल।
0: बट व्हाई इज आइकॉनिक?
1: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, कहे को पंगा लेने गए। छोड़ दे, आजकल जनता ना बहुत
0: पिक्चर्स हो गई। इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड दिया डिड इट। आई वाज इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नाउ, यू आर गेटिंग मी।
1: यू गाइस वांट ऑडिशन? या ट्रोल हो जाएंगे, मत करो।

0: Yes! Killed it!
1: पागल है क्या? ट्रोल हो जाएंगे. Yeah, not at all.
0: डीनू, डाल दे. ट्रोल हुए तो हो जाएगी.

0: को इन्टरनेट गेट कनेक्टेड स्टे कनेक्टेड।
1: नयाँ जडानको लागि सम्पर्क 9028-13-424 र 9058-14-175।
2: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।
3: शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।